जियो तुमरी कृपा ते तुद पछाणा तुमरी ओट तू है मेरा माणा तुर बिंदु जा और न कोई था तेरा खेल अखाड़ा जियो तुर बिंदु जा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना तो प्रभु जी पास सब कुछ कीता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस जिदे वड्याई ता तेरी वड्याई

कर बाहिर तेरा प्रवक्ता, तू जन के है संग कर कृपा प्रीतम प्रभु अपने नाम जपो हरन जन को प्रभु अपने कतान जन को प्रभु अपने कतान जो तू करे

स्वामी कृपा करे। चल कमल नानक आला दे किस दिन आम के पत परमेश्वर गत नारायण तन पाल साखी चरण।

मध्यन होत साधु तुरे आवण जानू रे थित पाई जन मरण के मिटे वसूरे गुरु नारायणू दाई गुरु गुर सच्चा सिद्धन हार गुर तुठे सब कुछ पाया जन मानक सब बनिहार हर गुण गाओ साफ सफाई हर गुण गाओ साफ सफाई मन तिंदे

कर्म का अनुसमरथ है करते, मैं तुझ बिन अवर न कोई, तुझ आपे शिष्ट से जिया आपे कोई, सब इको

0: You're listening to SikhNet Pio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
1: गौड़ी गंभीर प्रकृति का राग है। विलक दी आत्मा कृपा दी जाचना कर दी है, ते आपे दी खोज कर दी है। इसलिए इसे राग विच गुरु साहबान ने मन मत बुद्धि आत्मा मौत मुक्ति आदि गंभीर विषयां विच गुरबाणी उच्चारण की। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच सब तो वध बाणी इसे ही राग विच है। सुखमनी साहिब अते बावन अखरी जीवन दे सारे ही मतां दा तत दर्शाउंदियां हन। भगत कबीर जी दी सब तो वध बाणी इसे राग विच है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा फरमान है, गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे, पाणे चले सतगुरु कै ऐसा सिगार करे। गौड़ी दियां 12 वनगियां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच हन। जो दो शब्द हुण आप सरवण करोगे उन्हां विच गौड़ी दे जो सुर लगाए गए हन वो हन ऋषभ अते धैवत कोमल अते बाकी सारे शुद्ध स्वर। गायन समा रात दा प्रथम पहर पहला शब्द सरवण करो भाई गुरदेव सिंह खालसा जी पासों। शब्द बोल हन गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे। दूजा शब्द है प्रोफेसर हरचंद सिंह जी का गाया होया। बोल हन थिर कर बैसहु हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। पहला शब्द गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे।

श्री गुरु गोविंद सिंह कर करना पाए भले मग चारों वरना जेड़ा सिख अपने गुरु का शुकराना अदा नहीं करता भाई साहब आखते ने उस वर्गा नीच ते अकृत कण दुनिया ते नहीं मिलेगा। कलगीधर पातशाह जी ने तैनू कीड़े तो पातशाह बनाया किन्ने उपकार हन तेरे उत्ते ऐ गुरसिख कदी तू कलगीधर पातशाह जी का शुकराना अदा किया है। अज गुरु रामदास अपने गुरु का शुकराना अदा कर रहे हैं अपने आप नूं कीड़ा दस रहे हैं तू कितना कुछ शुकराना अदा करना है। हजूर आखदे ने भाई साहब भाई संतोख सिंह जी श्री गुरु

नहीं, जिनकी कुल मूढ़न की महा, जिन्हां दे कुल खानदान अनपढ़ सन, मूढ़ सन, उन्हां नूं पढ़ा के गुरुदेव ने निर्मले संत बना दिता। जिनकी कुल मूढ़न की महा, अखर भेव न जाने कहां, से पंडित तब पढ़ पढ़ बने, निज समता किसको ने गने, इम गादर पे शेर बनाए, बायस हंस चाल सिकराए। जिदड़ा तू शेर ते कावां तू हंस बना दिता, असु

अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है वाहे गुरु। अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है

राग गौड़ी बैरागण विच ऋषभ धैवत कोमल दोवें निषाद अते बाकी सुर शुद्ध लगदे हन। इस राग विच गंधार ते पंचम वर्जित हन। इस दी जाति औड़व वादी ऋषभ संवादी धैवत अते समा सवेर दा है। मैं बंजारन राम की शब्द दा गायन कर रहे हन प्रोफेसर करतार सिंह।

राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। जो तुम गिरवर तो हम मोरा। इफ यू आर द माउंटेन लॉर्ड देन आई एम द पीकॉक। जो तुम चांद तो हम पहे हैं चकोरा। इफ यू आर द मून देन आई एम द पार्ट्रिज इन लव विद इट। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। तुम स्यों तोर कवन स्यों जोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। फॉर इफ आई वर टू ब्रेक विद यू विद होम वुड आई देन जॉइन। जो तुम दीवरा तो हम बाती। जो तुम तीरथ तो हम जाती। इफ यू आर द लैम्प देन आई एम द विक। इफ यू आर द सेक्रेट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज देन आई एम द पिलग्रिम। साची प्रीत हम तुम से जोरी। तुम से अवर संग तोरी। आई एम जॉइंड इन ट्रू लव विद यू ओ लॉर्ड। आई एम जॉइंड विद यू and I have broken with all others. Jeh jeh jaun tahan teri seva, tum so thakur aur na deva. Wherever I go, there I serve you. There is no other Lord Master than you, O Divine Lord. Tumre bhajan kate jam phansa, bhagat het gaavai ravidasa. Meditating, vibrating upon you, the noose of death is cut away. To attain devotional worship, Ravidas sings to you, O Master. Madhve, tum na toro, to hum nahi tore. Tum syon tor, kavan syon jore. Raag sorat, taal, choti tin taal, 16 beats.

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, गौड़ी चेती महला पहला दा ए शब्द जो आप जी ने श्रवण किया है, इस शब्द के द्वारा साड़ी जिंदगी दा जो एक सफर है अते ओ सफर दी मंजिल नू असी जो खो चुके हैं, उस दी बाबत सानू महाराज एक बड़ी तकड़ी जोल्ट दे के सानू वापस जगा रहे हैं। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पंक्ति दे विच बयान करते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। वो जीवन नू एक यात्रा आखते हैं, अते आखते हैं कि ए सफल हो गई है। इमेजिन करो कि वो किस किस्म की थ्रिल होएगी, किस किस्म का प्लेजर होएगा, किस किस्म की स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच एक चेतना ए अपने जीवन च खुद आख सके, उसनू जी सके, उसनू इम्बाइब कर सके कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी ऑफ अस कैन क्लेम दिस कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी, इनफैक्ट सानू तो यह भी नहीं पता कि जीवन की कोई यात्रा भी है। सफल होना तो बहुत दूर की गल, सानू यह भी नहीं पता कि असी अपने जीवन की यात्रा च जा किधर नू रहे हैं, मंजिल वल नू या मंजिल तो दूर। बाबा जी ने अपनी बाणी दे विच एक पंक्ति उच्चारण कीती है जिथे वो आखदे हन असी मंजिल दे करीब तक ही जाना, असी मंजिल तो बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा दूर चले गए। पंक्ति सुनने वाली है, कहते हैं साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे, तावत ताए तावे प्रीत माया, लख कोसन को विथ दीजे। कहते यात्रा सफल ते की करनी, यात्रा सफल उदों हुंदी है जदों यात्रा दी जो डेस्टिनेशन है उत्थे पहुंच जाया जाए, उदों जो यात्रा कंप्लीट हो जाती है, सफल हो जाती है। पर जे यात्रा नालों उसकी मंजिल नालों उसके डेस्टिनेशन नालों जो पाड़ है, गैप है, डिस्टेंस है, दूरी है, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, इसका अर्थ यह होया कि यात्रु नू ए नहीं पता कि वह जा किधर नू रहा है। बाबा जी ने बाणी दे विच एक जगह आख्या है साडे मुतलक कि तुहाडी हालत यह है कि तुहानू यह पता नहीं तुसी किधरों आ रहे हो और किधर नू जा रहे हो, बस ए आख रहे हो आई एम वेरी बिजी, आई डू नॉट हैव टाइम। कोई पूछे ते कर की रहे हो, दैट आई डोंट नो। जा किधर रहे हो, दैट आई डोंट नो, बट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। किधर जा रहे हो इसका पता नहीं, किधरों आ रहे हो इसका कोई पता नहीं,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ते काल दर्शकर और तेरे बच्चे भी असिस्ता हम मेरे सोने चंद्रमा प्रतिक्रिया है।

नैनों पे ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग, चरण चलो मार्ग गोविंद, मिले पाप जपिए हर बिंद।

0: हमरी करो हाथ देर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मरे हमारा अपना जान करो पित पर हमरे दुसवे तुम काबो आप हाथ दे मोए बचावो सुखी बसे मोरो परिवार सेवक सिख सबे करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिए सा पैरन को वास करिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रे प्यासा तुम्हें छाड़ को वर ना त्याऊ जो बरचाऊ सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निभरिए उज्जो सदा हमारे पच्छा श्री स्तुजियो करियो रक्षा राख लियो रखन हारे सैब संसाहे प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चितर दिस्कंता काल पाए ब्रह्मा भवतरा काल पाए शिव जी अवतरा
1: काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जो सुखियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताय हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैन दक्षिण उपजायो आदंते के उतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार ते सिखो मारी सकल प्रजा दिना सवारी सिवन को सिवन सुख दियो छत्रन को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछान चीटी ते कुंचर स्थूला
0: सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जान जब युद्ध कर करा कर तारा प्रजा तरत तब दे हवारा जब या कर हो कबू
1: तुम्हें मिलत दे तरसम
0: जेते बदन से सा थारे आप अपनी बुद्ध उचारे तुम सब ही तेरे

कैसे दा शिव निरंकार का चिंत नहीं भयो। आप अपनी बुद्ध देते वर्णन पिन पिन तो देते तुम्हारा लखाना जाय पसारा कै भी सदा प्रथम संसारा एक रूप रूप स्वरूप रंग प्यो राव कई गोपा अंड जेर से तिशकिनी पूछ खान बो राय दिनी कौन हो राजा हो बैठा कौ सिमट प्यो शंकरे खेटा सगली शिष्य गाय चंबो आजुगा सरु संयंबो और अच्छा मेरी तुम करो सिख वार असिख संगरो दुश्चिंत उठो थुनवाता सकल कलेश करुणन खाता जे अस्तुता सरणी परे तिनके दुष्ट दुख थे मरे पुरख जम पग परे त्यार है तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार आए ताके काल निकट आया रक्षा हो सब काला दुष्ट रिष्ट रे तत्काला कृपा दृष्टा जान हरो ताके ताक तरक मो हर हो सब होई दुष्ट है अच्छा सके न कोई।

0: भैया पाएंगे जब ते तुम्हारे तब ते गुमान तेरे नियाने राम नीम पुराण पुराण अनेक कहे मत एक न मानो
1: सिमरो शास्त्र वे सबे वो भेद के आम एक न जानो कृपा तुम्हारी कर मैं न क्यों सब दोए बहानो सगल दो

सतगुरु मैं पाया सतगुरु ते पाया सह छेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईयां शब्दो तो गाओ अरि केरा मंजनी वसाया कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मना मेरिया तू सदा रो हर नाल हर ना रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गला समरा स्वामी सो क्यों मन विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रो नाले साचे साहबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब कुछ जिस ते सो पाए सा सिर्फ सलाह तेरी नाम मन वसाए नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधारो सात नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु बिटो जिस ते वडियाइया कहे नानक सुनो संतो सवत रूपे यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंचो चित कर सवागे कर सवागे शब्द वाजे कला चित कर तारिया पाइंदो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुरकरम पाया।

31 निर्धारित रागां विच गुरबाणी दे कीर्तन तो बाद पेश है संत बाबा सुच्चा सिंह जी दा ओह भाषण जो उन्होंने 5 दिन तक चलन वाले अदुत्ती गुरमत संगीत सम्मेलन दे समापत होने वेले दूर दूर तो लखां दी तादाद विच आईयां संगतां दा धन्नवाद करदे होया कीता संत बाबा सुच्चा सिंह जी।

राग गौड़ी चेती विच ऋषभ धैवत कोमल दोवे मध्यम अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दे आरोह विच गंधार सुर वर्जित है। इस दी जाति शाड़व संपूर्ण वादी पंचम संवादी षड़ज अते समा शाम दा है। इस राग विच मन राम नाम गुण गाइए शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।

एक कर्म छड़ के तू करोड़ा कर्म कर। भुखिया नू रोटी खुआ, जल छका, सेवा कर। पातशाह कहंदे ने तू एक कर्म छड़ के कई कर्म करेगा, जे नाम हिरदे विच नहीं वसिया नरकां दा बुआ जरूर वेखना पवेगा।